0: लुकैया मारे विडने ऊने दुक्की की वाले मरे मेमोरी लॉस कीला
1: मेमोरी लॉस कौन द डॉक्टर यार सुनने दे
0: मम्मे किन्हीं के बुन्ने हैं या सीनी विडने मुकुट आते पर विड करने हैं या माता
2: माय गॉड
3: सुपर डॉक्टर ने डॉक्टर हरि तो मुखिया दिए नाले
4: हिना वेवी सिंधु हन्ने FM 93.5 FM 93.7 හැන්දෑවෙ 4 වෙද්දි ටියුන් කරලා තියාගන්න.
5: Evening Drive with Chamit and Charu.